सहन शक्ति जिस विच ए वस्तुआं आ गई, जिस विच ए ताकत आ गई, ओ दुनिया तो ही विलक्षण है। ओदी महिमा अपरम

कि शांति दा सोमा जो संसार नू शांति दा उपदेश देण वास्ते आया, ओदे सामने वड्डे वड्डे भांबड़ ओ भी शांत हो गए। दुनिया दे इतिहास विच इक

तेरी रजा जिवें है वो परवान है, ओदे विच मैनू कोई हक नहीं के मैं कुछ हुक्म अदूली करा। ये एक संसार दे सामने नमूना पेश कीता है कि सिदक तो नहीं डोलना जालम, भावे जिन्ना मर्जी जुलम करदा, आखिर जित नाम सिमरन और सच दी हक दी हुंदी है। हजूर गुरु नानक पातशाह जी का फरमान है, कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही। ये झूठ दे बदल ये सदा अस्थिर नहीं रहिंदे, लेकिन सच दी आवाज सदियां तक बल्कि जुगां जुगांतरां तक बुलंद रहिंदी है। और उस सच दी रोशनी दे विच अनेकां ही राही उन्हां नूं मार्गदर्शन प्राप्त हुंदा है। तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी अकाल पुरख वाहिगुरु दे भाणे विच किवें रहना है,

चारे पासे एक खबर फैल गई। चंदू जिसनू समय दी हकूमत दे बादशाह ने गुरु अर्जन देव पातशाह नू तसीहे दे दे के शहीद करन दा इशारा मिल चुकया सी। ओ चंदू अपने वल्लों उसने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। प्रभु परमात्मा दा खौफ भुल गया, अपना आप भुल गया, सिर्फ एक तशद्दद करना ही उसके सामने। कई तो यह भी कहते ने कि उसने बदला लिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के साहबजादे गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं जदों चंदू दे भेजे हुए दूतां ने रिश्ता कर दिता और आके दसिया कि गुरु नानक दी गद्दी दे वारस गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सहजादे साहिबजादे हरगोबिंद साहिब पातशाह उन्हां नूं रिश्ता दे आए हां, तां हंकार विच हौमे विच मतिया होया ए चंदू, क्योंकि सरकारे दरबारे ए नौकरी करदा सी, इनू बड़ा चंगा दीवान दा रुतबा हासिल सी। हंकार विच बोलिया, तुसी चुवारे दी इट मोरी नू ला आए हो, पाओ अपने आप नू उसने बहुत वड्डा दसिया ते गुरु घर नू एक बहुत नीवा दर्शाया, जिसनू सुन के कहंदे ने संगतां ने बड़ा रोस कीता और संगत ने आखिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी हो, आप जी ने यह रिश्ता नहीं लैना, वापस कर दियो, मोड़ दियो रिश्ता।

प्यार प्राप्त किया, जिन्होंने मालिक की खुशी प्राप्त की। से अंबी छावड़ी है जी, ओ अंबा दी छावे बैठिया, खुशियां बन दियां ने। पति प्यार दे आनंद विच मगन ने, जीवन दा रस लै रही ने। से गुण मंज नामनी, ओ गुण मेरे विच नहीं। हों कह जी दोष त्रेओ जीओ, मैं किने ते दोष देवां, किसनू आखा माड़ा कि मेरी हालत किसने कीती। आम तौर ते मनमुख दी ये दशा है कि वो जो भी करता है ना, उदे सामने फिर जो कुछ नतीजा आउंदा है, वो आले दुआले ते दोष लभदा है। किसे होर दे कारण करके मेरे ते आफत आई है, विपता आई है, मेरी बेरसी हुई है, अपने दोष नहीं देखता। हालांकि पावन बाणी विच बड़ा स्पष्ट किया गया है, दत्ता है दोष ना देऊं किसे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजाए अवरजना। और अपने दोषां वाले झात मार लेनी भी बड़ी वड्डी गुरमुखताई। दोष हुंदियां होयां, गुनाह हुंदियां होयां, गलतियां हुंदियां होयां, इन्हां ते निगाह मार लेनी ही बड़ी वड्डी गल है, जिहड़ा अपनियां गलतियां वल ना वेखे। अपने अगे आए हुए नतीजे तो भी दूजिया दोषी ठहराने का यतन करे, वह बंदा कदे ठीक राह नहीं तुर सकता। दूजिया च दोष कढ़ने वाला बंदा कदे आप ठीक नहीं हो सकता। शुद्ध पवित्र ते निर्मलता वह होगा जो अपने दोष लभण का यतन करे। इथे अपने दोष लभण की गल मारे सच्चे पातशाह ने शब्द द्वारा सानू प्रेरणा बख्श की। कह जी दोष त्रेहो जी, मेरे अपने इन्ने दोष ने, मैं किसी नूं कादा दोष दे, मेरे विचों गुण नहीं हन।

0: remind ourselves of the joy and the inspiration and the love and the hope and the projection and the prayer that we've been blessed to live in this lifestyle through the role model of Guru Gobind Singh. So it's not only that we're celebrating what actually happened on Baisakhi Day, but the spirit behind what Guru Gobind Singh meant and what he felt throughout his life. Well, the first Shabad that we're going to sing is Hum Ehe Kaaj Jagat Moe Aaye Tarum Hed Gurudev Patai. It's Guru Gobind Singh telling his own story and speaking to us plainly about what he came to this earth to do. So please sing along or sit up straight, close your eyes, meditate, and allow the words of your Guru, of our Guru, to penetrate into your heart so that you leave here feeling like Guru Gobind Singh felt.
1: मैं बस एक गल कहनी चाहता हाँ कि तुसी अपना बिल्कुल जिदा असी हुण योग जिदा करना सिखिया होया रे मन ए विद योग कमाओ पर एक गल है पहला अपना मन नू बिल्कुल शांत करो बिल्कुल हिलना नहीं देना कोई गल नहीं सुनना मन तो बस अपना अखां बंद के दोनों कन्ना नाल सुनना बिल्कुल आसन पूरा पक्का विच बैठ जाओ पूरा पक्का आसन विच बैठो जिदा अपना गुरु साहिबां महाराज बैठते हैं भावे तुसी हुण अपना जो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिदा हुण बैठे हैं हिलदे नहीं तुसी असी सारे जाने इकट्ठे उदा ही बनना एक पुरातन परंपरा हैगी है सारे विद्या जो इंडिया च चलता है वो गुरु शीशा परंपरा नाल चलता है शायद तुसी ऐसे परंपरा का नाम सुनिया होया पर मैं एक गल दसना शिष का मतलब की है गुरु ते शिष शिष हुंदा शिष्या गुरु दे रिफ्लैक्शन गुरु दी एग्जैक्ट एग्जैक्ट रिफ्लैक्शन अगर असं यही गल मनते हैं फिर असी अपना गुरु गुरु दे वर्गा बनना सारे सारे जाने सारे संगत कट्ठे अपना अखां बंद करके गुरु गोबिंद सिंह की यादी च गुरु गोबिंद सिंह वर्गा बनना है।

0: देख लेंगे कृपा होएगा कि नहीं। इसे इट्स अप टू अस टुगेदर।
1: आप जपाए जपे सो नाओ। गुरु गोविंद सिंह जरूर मेहर करेंगे, जरूर, क्यों नहीं। अगर इन्ने प्यारे सिख उन्हें इन्ना जबरदस्ती नाल बुलाते हैं, नहीं मनन गे? मनन गे जरूर।

कर प्रसाद गुरुदेव अस्पदी जय प्रसाद छती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधित तन लावे तिसको सिमरत प्रमगत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जय प्रसाद गिरे संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याए त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्याग कत अवर लुपावे जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जय प्रसाद तुझ सब को माने मुखता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जबत दर गए मन पावे नानक पत से ती कर जावे जय प्रसाद अरोग कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सन्नी पर ठाकुर प्रभु ताके जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न विसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए पर अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई तिसे त्याए जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है जय प्रसाद करे पुन बोधान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास जितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै जय प्रसाद सुने करन नाद जय प्रसाद पेखे बिस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभु त्याग वर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सिवराच जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभु तेरी मैया आपको कछु न किन्हू लिया।

इतनियां गलतियां कीतियां पिछले जन्मा विच कि मुड़ के ओही गलतियां इस जन्म विच कर रहे हैं। ए जरा रेडियो बंद कर दियो, विच चल रहा है, टेप नूं चलाण तों पहला वेख लिया करो। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु। पातशाह आखदे पहलां गलतियां कीतियां हुण मुड़ के गलतियां कर रहे हैं, ते दाता जे तू बख्शना है ते बख्श लै, नहीं तां साडे लई तां अगे जुतियां तैयार ने। पातशाह गुरु नानक देव जी आखदे

करुणा निदान हे पतत पावन कृपा निदान जगत गुरु तेरे तो बिना मैनु कोई आसरा नहीं।

थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है। कबीर जी ते कबीर जी दे करों लोए जी दोनों जाने नदी दे किनारे ते खलोते ने। नदी पार करके अपने घर जाना है।

आखन लगे भी जिन्ने तेरे पैसे बनगे मैं देवांगा। पैसे लै लमी तू किराया लै लमी। पैसियां बल देख के मलाह दा मन मन गया, चंगा बई बैठ जा बेड़ी विच। अज दोनों ही जाने लोई दी ते कबीर दी बेड़ी विच बैठे ने। ज्यों ही बेड़ी दे विच चढ़े ने अगों सेठ उठ के खलो गया। कोई मलाह है की करी जांदा है, गरीबड़े आजियां नू मेरे नाल बठा।

चित्र निर्मोल कीरा आदत गुणी गहीरा अनहद पाणी पूंजी संतन हथ राखी प्रधान के ये समूल वस्तु से ना मुल पंद इस वस्तु का मुल पंद पर उन्होंने कीर्तन का पूरा नाम प्राप्त नहीं होता जिन्होंने कीर्तन रबी दास समझ के इसका आदर सत्कार किया है मरदानिया उन्होंने चोरिया मालिक पर मरदानिया यह की है महाराज एक सहित रुपये की है अजू कह लगे आपा की करनी है मरदाने जा वापस दे महाराज मुंह बना के मरदाने ने कहा सतगुरु मसा मसा माया का मुंह वेखे है तो तुम कहते हो वापस अजू कह लगे मरदानिया आपा इन किसे चुकी करांगे मरदाने ने कहा महाराज तुम थोड़ो चुकनी मरदाना आप ही चुकी फिरेगा इतने जाओगे दो बजे कीर्तन सुनावे हम तो कदे नहीं कहांगा महाराज को लगी अजू कह लगे जी मरदाने अति मालिक के हुक्म जिथे जावे मालिक आपे प्रबंध करेगा वापस दे बंदे चू न बंदे पंछी ते दरवेश और जिन्हों तकवा रब का तिना रिजिक गिरी गांठ नहीं बांधते जमे देवता खाए गोविंद ताके पीछे गिरे मत भूखे दे जाए एक सौ रुपये की खैरी वापस दिखती सात राज होर प्यार आया नौकर नु बुलाया घर का कोई रबी दूर आया है और सौ सौ के मन धरे है प्रसादे का थाल परोस ल मठियाई भी रख लै दुध का गड़वा भी भर लै चिट्टा रुमाल पा के तू चल मैं दुकान बंद करके आना हा उस दादे के दर्शन करना अगर कम पहुंच गए सहबा दिन के पदार्था का थाल रखिया मथा टेकिया हजूर ने अमीर ऋषि तकिया सिर को नजर करम सिरकार नानक नदरी अगर कह दिए झोलियों पर उठिया मस्ती बैठा चाहते इधरों सारसराय भी आए हजूर के दर्शन किए मन खरे हाथ जोड़ के किया गरीब नवाज दुनिया को तारन वाले दुनिया को दाता देने वाले मेरी झोली चीख है हजूर कह लगे सारसराय की चाहना है साक्षा दुनिया भी दाता सारी है हीरे दान पन्ने पुखराए खंडौल सोना चांदी सब कुछ है पर गरीब नवाज सब कुछ होंगे अजे मन का खप्पा पूरा नहीं होया खुश नहीं बने मन नहीं हो मन संतुष्ट नहीं हो मन तो संतुष्टि नहीं हजूर कह लगे हां सारसराय मन का भोजन हो रहा है मन ये नहीं रजना मंत्र मन पदार्थों नहीं रजना गरीब नाल फिर करो कृपा हजूर ने सोचिया जरा तकिए अंदरों बोलता है कि बाहरों अजू कह लगे सारसराय तू देरी नाल आया है जेडी दात सी ना वो तेरा नौकर ले महाराज फिर मैं हजूर कह लगे जे तो भी दात लेनी है तो नौकर के चरणा से है ऐसी कसौटी इम्तहान देखना से भी अंदर निम्रता लैके होंगे तभी पर सारसराय का जरा मन रूपी चोलिया सी वो बिल्कुल सफेद अंदर श्रद्धा से प्यार सी रो पिया हरी परिवार मेरा बच्चा है पर जे तुम आखो तो मैं थोड़े कुत्तिया ने पैसे मना सकता तो दास भक्त मेरे नाल मेरे मन भी तो दूर हो जाए अगर मैं बख्शिश पीती सारसरा है जरा नेड़े हो दात मिलन लगी है तुम भी मन करके नेड़े हो जाओ बख्शिश होने लगी है हजूर ने सारसराय के सिर से फिर प्रयास रखिया अभी उसकी चीज नाल तकिया देखिया सारसराय जब सतनाम कर हुक्म मस्तक हाथ हर विचो मार कड़िया बड़े आईया सह सुखे नाम नाम की दात जो जो सारसराय सिमरन नाल जुड़ता है त्यों त्यों मन सुखी होता है सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे धोरे तो सीमा मेरा सतगुरु जी तो अज सारसराय दोलियां भर दिखाई मेरे सतगुरु नानक ने क्यों ना भरे अज खास पूर्व माशी का दिन आखो स्थिति भरे सारसराय दोलियां भरिया गई थोड़े उत्ते रहमत सूरज की किरण जिथे जाएगी अंधेरे को दूर करनी जाएगी गुरु की मेह जिथे जाएगी चोरियों पर तो आओ प्यारी आप अनुभव
सर्वत्माई साई जो अमृत देवी है।

पर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुल्म नूं देख के कदम पछां ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मावां ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दे नीयां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुल्मी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंह पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुल्मी राजा सिंघां ते कहर टांदा है। मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई, मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं, ते असी उनू छड़ देवांगे, केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा।

सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, ओ मेरी मां नहीं, हो सकता है उहदे पुत्र दी शकल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दीआं मावां इंज सिदकों डोलदियां नहीं हुंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक वारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ए तैनूं छड देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पाल आया, जाद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका अजे बहुते दिन नहीं होए, किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दीआं मावां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओह ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोबिंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दीआं एहो जीआं गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ए कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल रहे।

को बनज करे रतन पारखु होए जहरी कहावई। कौडियां विचों पैसे, पैसियां विचों रुपये, फिर सोना, फिर तकड़ा व्यापारी हीरियां दा आखरी स्टेज ते पहुंच गया। भाई साहब जी कहंदे ने हौले हौले तरक्की कीती ते सब तो उच्ची मंजिल ते पहुंच गया ओ व्यापारी, पर शुरू होया कौडियां तो। कौडा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे रतन पारखु हो जहरी कहावई। जहरी कहाए पुन कौडा को बनज करे पंच प्रवान में पत सटा घटावे। की वेखिया फिर ओई मैले कुचैले कपड़े पाए, ते थां थां ते होका देंदा फिरदा, ते कौडियां नाल फिर व्यापार शुरू हो गया। इतना हीरियां दा उच्चा व्यापारी हो के ते जिथों व्यापार शुरू कीता सी ऐसा धक्का लगा कि जिथों व्यापार शुरू कीता सी उथों फिर शुरू होया। लोग हसदे ने, मजाक उड़ांदे ने, कर्जे देण वाले सिर ते खड़े हो जांदे ने, लैण वाले भी। गुरु की साध संगत ओ मुसीबत विच फस जांदा है बंदा। लोग कहंदे ने आखिर तू कीता की। भाई साहब जी अपनी गल ते आउंदे हन, वचन कर दें

लोक पर लोक बिखे ऊंच पद पावई। छाड़ गुरुदेव आन देव को सेवक होए, निफल जन्म कपूत होए हसावई। लोकां दी सेवा करदा, संतां दी सेवा करदा, देव देवतियां नूं मंदा होया मनुख उच्चे ते सुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणा विच पुज गया। पर की वेख्या, जेड़ा सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्पण हो गया, कोई थोड़ी जी दुख सुख आ गया ते फिर थां थां ते भटकन लग पिया। कदी किसे संत कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे देवी कोल, कदी किसे देवते कोल, ते फिर लोग मजाकां करदे ने, आ देखो गुरु का सिख किथे किथे भटकदा फिरदा। आ थोड़े दिन ही होए हरे, मैं एक प्रेमी गुरसिख नूं पुछया की हाल चाल है, कहिंदा कम तुर नहीं रहा, बड़ा परेशान हां। कहिंदा एक चिट्ठी आई है, ए भेजी है साईं बाबा वालियां ने, आख्या एदा जाप करो तुहाडे मन नूं भी शांति मिलेगी, ते नौ निधियां अठारह सिद्धियां आउणगियां। ते मैं क्या भोले मनुख की करदे फिर? कहिंदा जिथों नौ निधि मिले असीं ओदा ही जाप करना है ना। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम, ते नाल लिखिया सी एदियां 500 कापियां छाप के फिर होर ना पासे वंड। नबज वेख लैंदे ने ए सुहागण किवें अपने मालिक नालों टुटे ते नूं पतित करिए। ते थां थां ते ऐसियां दुकानां हन, गुरसिख नूं बड़ा सावधान होना पैंदा, जिवें पति विरता स्त्री सावधान हुंदी है। मैं क्या गुरमुखा, स्त्री सहुरे नूं भी मत्था टेकदी है, जेठ देवर दा भी ध्यान रखदी है, ओदा भी सत्कार करदी है, किसे संत नूं दुरकारना नहीं। सत्कार अदब हर धर्म दा करना है, पर जो स्त्री अपना मन ते तन अपने मालक नूं देंदी है ओ किसे दूजे नूं नहीं दे सकदी। इसे तरह अदब सारियां दा कर, पर अपनी जड़ नूं ना भुल, नहीं तां मजाक दा कारण बन जाएगा। तू अज साई बाबे नू मनेगा, कल तेरे बच्चे थोड़ा बहुत ए भी सिखी तो पतित हो जाणगे ते मुनकर हो जाणगे। ना सिख ना हिंदू ना गोरे कुछ भी नहीं रहणगे, ते गुरु की साध संगत। गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने ए गुरु आप ही चाहे ता पल्ला पकड़ाए, नहीं तां असी सिख तां छड़ जांदे आ गुरु। बाबा फरीद जी भी कहंदे ने

राज साज हम पर जब आयो यथा सकत तब तारुम चलायो। कलगीधर पातशाह बड़ा सुंदर लिख दे ने, राज साज हम पर जब आयो, ए राज पाठ दी जिम्मेवारी जद मेनू मिली यथा सकत तब धर्म चलायो, जिन्ना भी हो सकया मैं इसनू अगे तोरन दी कोशिश कीती।

सतगुरु कहिंदे ने फती शाह राजा बिना मतलब ही साडी ते इसने हमला बोल दिता। सतगुरु कहिंदे ने सी दीवान दे विच बैठे हुए सां, जद हमला होया उपरंत फती शाह को पातब राजा लोह परा हम सो बिन काजा। बिना मतलब ही इसने साडी ते हमला बोल दिता।

जीतियन फौज तामन कोपे लाल चंदन कियो लाल रूपं जिने गजियं गर्भ सिंगं अनुपं। सतगुर कहिंदे ने साडे हलवाई लाल चंद इन्हां नूं भी बड़ा जोश आया, गुस्से दे विच लाल हो गए, कहन लगे सतगुरु जी मैनू भी आग्या दिओ, मैं भी जंग करांगा। ते सतगुरु कहन लगे लाल चंद तू कदी तेगता चलाई नहीं, जंग किरे करेगा। सतगुरु नूं कहन लगा लाल चंद, सतगुरु जी मैं तेग ते चलानी नहीं जानदा, लेकिन खुरपा चलाना खूब जानना, आप आशीष दिओ मैं तानू इहदे नाल ही लड़की विखावांगा। कहिंदे ने लाल चंद जंग अंदर आके बड़ा सुंदर लड़े उपर

उठी छिछ इच्छं कदा मेद जोरं मनोमत मटकी कान फोरन। कंदनी कृपाल चंद उदासी जी ने आई जरनैल हयात खां दे सिर अंदर ऐसा कुटका मारिया, जद कुटका उदे सिर दे विच वजिया, साहब कहने ने मैं ठीक कह रहा, उठी चिच इच्छन कदा मेट जोरन मनो माखियन मटकी कान फोरन। जद सिर दे विच सोटा वजिया ते उदे विचो मगध दियां छिट्टां इंज बार आईया जिवें के भगवान कृष्ण ने अपनी मां दी मखन वाली मटकी फोड़ दिती होवे।

इन्हें बड़े ही बाण चलाए, बड़े सैनिक किसने मार दिते, मैदानी जंग अंदर लटा दिते। क्यों? रसंग रोदंग राचे महालोभ माचे, क्योंकि गुस्से दे विच रचिया सी, लोहे दी तरह लाल होया जंग कर रहा सी। हाने शस्त्र ताज